0: ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। अब आज की बाकी खबरें समाअत फरमाइए। इंतहा पसंद ग्रुप पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फलस्तीन का कहना है कि ओकामोतो कोजो का इंतकाल हो गया है, जो 50 साल से जायद अरसा कबल इसराइली हवाई अड्डे पर एक हलाकत खेज फायरिंग में मुलविस था। उसकी उम्र 78 साल थी। जापान की नेशनल पुलिस एजेंसी का कहना है कि ओकामोतो ने जनूब मगरबी जापान की कागोशिमा यूनिवर्सिटी में तालीम के दौरान एहतजाजी तहरीकों में हिस्सा लिया, जिनमें वियतनाम जंग के खिलाफ तहरीकें भी शामिल थीं। ओकामोतो ने अब कलदम जापानी रेड आर्मी के अस्करियत पसंद ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की, जिसे शिगेनोबू फुसाको और दीगर ने कायम किया था। ओकामोतो और दो दीगर ने 30 मई 1972 को इसराइल के तलबीब शहर के करीब एक बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे के अंदर अंधाधुंध फायरिंग की और दस्ती बम फेंके। इस हमले में 24 अफराद हलाक और 76 दीगर जख्मी हुए। इसराइली हुक्काम ने ओकामोतो को गिरफ्तार करके उम्र कैद की सजा सुनाई। उसे 1985 में फलस्तीनी अस्करियत पसंदों और इसराइली हुकूमत के दरमियान कैदियों के तबादले के एक हिस्से के तौर पर रिहा किया गया था। 1997 में उसे और जापानी रेड आर्मी के दीगर अरकान को लबनान में हिरासत में लिया गया, लेकिन बाद में उसे वहां पनाह दे दी गई। माजी की जापानी रेड आर्मी के साथ मिलकर लड़ने वाले पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फलस्तीन ने ऐलान किया है कि ओकामोतो जुमेरात को लबनान के दारुलहुकूमत बैरूत के मुजाफात में इंतकाल कर गया। जापान की बड़ी टेलीकॉम कंपनी सॉफ्टबैंक का कहना है कि वो अपनी फ्लाइंग बेस स्टेशन कम्युनिकेशन सर्विस की अंदरूने मुल्क आजमाइश अगस्त के वस्त में या इसके कुछ बाद शुरू करेगी। सॉफ्टबैंक ने जुमेरात को इस मंसूबे का ऐलान किया, जिसे हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म स्टेशन या हॉप्स के नाम से जाना जाता है। हॉप्स से मुराद मवासलाती आलात से लैस बगैर पायलट के हवाई जहाज हैं। ये तकरीबन 20,000 मीटर की बुलंदी पर कुर्राए कायमा में तवील मुद्दत तक परवाज करने की सलाहियत रखते हैं। ये उड़ने वाले बेस स्टेशन ऐसी सूरत में भी 100 किलोमीटर के दायरे में मवासलाती कवरेज फराहम कर सकते हैं, जब ज़मीन पर बुनियादी ढांचा दस्तयाब न हो। सॉफ्टबैंक को तवक्को है कि हॉप्स को आफात के दौरान या दूर दराज पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल किया जाएगा। कंपनी जल्द से जल्द अगले साल तक इस सर्विस को तिजारती शक्ल देने का हदफ रखती है। जापान के मगरबी प्रिफेक्चर नागासाकी में बच्चों ने तकरीबन 150,000 सूरजमुखियों से बनी द्योहेकल भूल भुलैयों की सैर की है। इस प्रिफेक्चर के उनजेन शहर में एलिमेंट्री स्कूल के तलबा सन 2023 से मकामी बाशिंदों की मदद से हर साल सूरजमुखी की भूल भुलैया बनाते आए हैं। बच्चों ने दाखिली दरवाजे से लेकर खुरूज तक का रास्ता खुद डिजाइन किया। उन्हें उम्मीद है कि भूल भुलैया नया सियाहती मरकज बन जाएंगी। तीसरी जमात के तलबा ने जुमेरात को कागज की पीली पट्टियों से दाखिली दरवाजे को सजाकर इस साल की तख्लीक को हतमी शक्ल दी। उनमें से एक ने सयाहों को सूरजमुखी की तरह मुस्बत रहने की तलकीन की। इसके बाद तलबा भूल भुलैयों में दाखिल हो गए और बाहर निकलने के रास्ते का खोज लगाया। बच्चों की तरह कदावर ये सूरजमुखी की भूल भुलैया 3,300 मुरबा मीटर खेत पर मुहित हैं। कुछ बच्चों ने इस तजर्बे को चैलेंजिंग लेकिन पुरलुत्फ करार दिया। ये भूल भुलैया इस माह के आखिर तक अवाम के लिए खुली रहेंगी।
1: और आखिर में खास खबरों का खुलासा। जापान की हुकूमत ने जुमे को माहरीन का एक नया पैनल तश्कील देने का फैसला किया है, जो गैर मुल्की शहरियों को कबूल करने के मुस्तकबिल के तरीकों का जायजा लेगा। आसियान वज़रा खारजा बुहरा जनूबी चीन में तनाज़ात को रोकने के लिए बनाए गए ज़ाब्ता अख़लाक के हवाले से इस साल के अंदर मुज़ाकरात मुकम्मल करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया है कि बुरा अमर में हौसियों ने दोबारा हमला किया तो ईरान जिम्मेदार होगा। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुईं।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी

0: यह है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का आपके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। उगते सूर्य के देश से सबसे पहले स्वीकार करें अपनी सखी शांग्रीला जैन का कोनिचिवा, नमस्कार और आदाब।
1: सभी दोस्तों को रंजना सिंह का भी कोनिचिवा नमस्कार। फिर आया एक नया सप्ताह और हम आ गए लेकर आपके पत्रों के उत्तर और जापान के बारे में कई जानी अनजानी रोचक बातें।
0: उफ रंजना जी, इस गर्मी ने तो हाल बेहाल कर रखा है। काश हवा करने के लिए कोई पंखा मिल जाए।
1: अरे आपका हुक्म सर आंखों पर, आपने मांगा और हाजिर है ये पंखा।
0: अरे वाह क्या बात है, फोल्डिंग जापानी पंखा। एक समय था जब गर्मियों में ये अक्सर सभी के पास दिख जाता था।
1: समय के साथ थोड़ा बदलाव जरूर हुआ है। नए जमाने में युवाओं के हाथों में इन सुंदर पंखों की जगह ले ली है छोटे से इलेक्ट्रिक फैन ने।
0: सही कहा, लेकिन मुझे तो ये फोल्डिंग जापानी पंखे आज भी बड़े ही सुंदर और सुविधाजनक लगते हैं। तह करके ये आसानी से पर्स में आ जाते हैं और चार्जिंग का भी झंझट नहीं। वैसे रंजना जी जानती हैं, इन फोल्डिंग जापानी पंखों जिन्हें सेंसू कहा जाता है, उनका इतिहास काफी पुराना और रोचक है।
1: जी, कहीं पढ़ा था कि ये फोल्डिंग पंखे जापान में करीब 9वीं शताब्दी तक बनने शुरू हुए थे। शुरुआत में तो ये सिर्फ 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 सेंटीमीटर लंबी लकड़ी की पट्टियों में एक सिरे पर छेद करके और उन्हें वहां बांध कर बनाए जाते थे, जो खुलने पर अंग्रेजी के वी अल्फाबेट का आकार लेते थे।
0: बाद में इनका आकार हाथ में हिलाने लायक छोटा हो गया था, लेकिन उससे पहले लकड़ियों की पट्टियों से बने इन पंखों को कमरे में सजावट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इन पर खूबसूरत चित्रकारी भी की जाती थी। फिर जब इनका आकार छोटा हुआ तो ये कुलीन वर्ग के लोग इससे हवा करने के साथ ही आम जन से अपना चेहरा ढकने और शाही दरबार की महत्वपूर्ण बातों या कविता लिखने के लिए भी इस्तेमाल करने लगे।
1: वाह क्या क्या अनूठे उपयोग थे। पंखों को नोटबुक की तरह इस्तेमाल भी किया जाता था। वहीं बीतते समय के साथ इनकी खूबसूरती बढ़ती गई। लकड़ी की पट्टियां एकदम पतली और नाजुक हो गई और उन पर कागज या कपड़ा चिपकाया जाने लगा जिस पर सुंदर चित्रकारी की गई होती है और खास तरीके से इनकी तह की जाती थी। 11वीं सदी तक तो ये अभिजात वर्ग की महिलाओं का फैशन स्टेटमेंट बन गया था, उनके पोशाक का अभिन्न हिस्सा।
0: और हाँ, गर्मियों में ये हमारे पर्स की जरूरी सामग्री भी है। देखिए, जापान की पारंपरिक मंच कला नो और काबुकी तथा नृत्यों में भी इनका खूब उपयोग किया जाता है। पंखा हिलाकर हाथों और कलाइयों की अदा को और बढ़ाया जाता है, साथ ही इनसे कलाकार अपने भाव भी अभिव्यक्त करते हैं।
1: यानी एक अदना सा पंखा जिसके अनगिनत उपयोग।
0: बिल्कुल सही कहा, गुस्सा दिखाने के लिए पंखा झटक दो और प्यार दर्शाने के लिए धीरे से कलाई को घुमा दो। वैसे भारत जैसे गर्म देश में भी हाथ पंखों का लंबा इतिहास है। हर प्रांत में इन पर कढ़ाई और सजावट की अलग अलग शैली होती है।
1: तो मित्रों, आप हमें बताइए, क्या आपके यहाँ आज भी हाथ वाले पंखे इस्तेमाल होते हैं और ये किससे बनाए जाते हैं?
0: आपके जवाब और हो सके तो आपके यहाँ के पंखों की तस्वीर का हमें इंतजार है।
1: जी, इंतजार तो श्रोताओं को भी है अपने पत्र सुनने का।
0: तो चलिए बिना देर किए लेते हैं ये पत्र जिसने लिखा है ओडिशा के सिंगा से। नाम तो आप समझ ही गई होंगी, हमारे नियमित श्रोता सुरेश अग्रवाल ने। लिखते हैं 5 जुलाई को प्रसारित चेरी के देश से कार्यक्रम के अंतर्गत जापान में सुख शांति अमन और विश्व कल्याण की कामना के साथ मनाए जाने वाले ताना बाता उत्सव के संबंध

0: प्रस्तुत जानकारी अत्यंत रोचक, ज्ञानवर्धक और हृदय स्पर्शी लगी। इस पर्व की परंपराओं, उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा मानवता के लिए उसमें निहित मंगल कामनाओं से परिचित होकर मन सचमुच पुलकित हो उठा। आज विश्व का एक बड़ा भाग विभिन्न प्रकार के संघर्षों, युद्धों और अशांति से जूझ रहा है, तो ऐसे में ताना बाता जैसे पर्व का संदेश और भी अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है। हमारी भी यही हार्दिक कामना है कि दुनिया से वैमनस्य और हिंसा का अंत हो तथा ये सुंदर पृथ्वी सभी के लिए प्रेम, सौहार्द, शांति और भाईचारे का सुरक्षित एवं सुखद बसेरा बने। कार्यक्रम के समापन पर ड्रीम्स कम ट्रू समूह द्वारा प्रस्तुत गीत भी अत्यंत मधुर, कर्णप्रिय और मन को छू लेने वाला लगा। जानकारी और संगीत का यह सुंदर समन्वय कार्यक्रम को और भी यादगार बना गया। श्रोताओं के लिए प्रत्येक सप्ताह इतनी सुंदर, ज्ञानवर्धक और आत्मीय रेडियो चौपाल सजाने हेतु आप सभी का हार्दिक धन्यवाद एवं साधुवाद।
1: सुरेश जी, हर सप्ताह बिना नागा पत्र लिखने के लिए हृदय से आभार।
0: सचमुच जितना इंतजार श्रोताओं को अपने पत्र सुनने का होता है ना, उतना ही इंतजार मुझे सुरेश जी की विशेष टिप्पणी का होता है। रंजना जी, इस साल ताना बाता के अवसर पर आपकी क्या मनोकामना रही?
1: मेरी मनोकामना तो वही है जो आज सारी दुनिया मांग रही है, कि जल्द से जल्द ये युद्ध समाप्त हो और पूरे विश्व में शांति आए। साथ ही ये भी इच्छा है कि मैं मरते दम तक स्वावलंबी रहूं।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: और आप बताइए, आप क्या मांगती हैं?
0: देखिए, चेरी के देश से कार्यक्रम के प्रस्तोता की क्या इच्छा हो सकती है, बस यही ना कि ज्यादा से ज्यादा श्रोता मित्र कार्यक्रम सुने और बड़ी तादाद में हमें पत्र भी लिखें।
1: जी हाँ, लंबे चौड़े पत्र ना सही, 2-3 लाइनों में अपनी प्रतिक्रिया तो अवश्य ही दी जा सकती है।
0: बिल्कुल, पत्र लिखने की प्रक्रिया को हमने आपके लिए आसान भी कर दिया है। बस वेबसाइट खोलिए और होम पेज पर सबसे ऊपर बैनर पर लिखा है, यहाँ क्लिक कर संदेश भेजें। साथ ही कार्यक्रम के विवरण में भी यही लाइन लिखी है, जिसे क्लिक कर आप तुरंत संदेश भेजने वाले पन्ने पर जा सकते हैं।
1: जी हाँ, ध्यान रखें कि संदेश भेजने के लिए अब बस यही एक लिंक है।
0: याद रखें, हमसे पूछे कि पन्ने पर भेजे संदेश और प्रतिक्रियाएं अब हम चेरी के देश से कार्यक्रम में शामिल नहीं कर सकेंगे। हमारा आपसे अनुरोध है कि कृपया हिंदी सेवा के लिए कोई संदेश या प्रतिक्रिया हमसे पूछे पन्ने के माध्यम से ना भेजें। अगर आपने अपने कंप्यूटर पर उस लिंक को सेव कर रखा है तो उसे डिलीट करके नई लिंक को अपनाएं।
1: अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं उत्तर प्रदेश में बांदा, जहां से हमारे एक पुराने श्रोता संतोष कुमार सोनी लिखते हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपका बहुत पुराना श्रोता हूं। आपको याद है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप मेरे पुराने पत्र देख सकते हैं जो आपके पास होंगे। वर्ष 1999 से 2011 के बीच मैंने रेडियो पर आपको नियमित सुना। आपसे कई बार बातचीत हुई। बस आपसे अनुरोध है, यदि आपके पास सुबोध जापानी की कोई सामग्री हो तो भेज दीजिए।
0: संतोष कुमार सोनी जी, NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा परिवार में आपका पुनः स्वागत है। और देखिए ना, हम अपने श्रोताओं को तो हमेशा याद रखा करते हैं, पर श्रोता मित्र ही इतने साल के लिए हमसे दूरी बना लेते हैं। इतने बरस कहाँ व्यस्त रह गए, सब खैरियत तो थी ना?
1: सही कहा, हम बिना रुके निर्बाध रूप से लगातार सालों से प्रसारण करते आ रहे हैं।
0: जी, पिछले साल तो हमने जापान के हिंदी भाषा में प्रसारण की 70वीं वर्षगांठ भी बनाई। इस अवसर पर आयोजित विशेष प्रसारण सुने क्या आपने संतोष जी? और जहाँ तक बात जापानी भाषा सिखाने की पुस्तक की है, तो अब देखिए पेपरलेस का जमाना है, आपको ये पुस्तक वेबसाइट पर मिल जाएगी। पठन सामग्री के साथ ही इसके ऑडियो भी उपलब्ध हैं, आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और जब चाहे पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। आपके मित्र हों या बच्चे, हर कोई इन्हें अपने डिवाइस पर निशुल्क

0: डाउनलोड कर सकता है।
1: पत्रों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले नोट कर लीजिए हमारी फ्रीक्वेंसी।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
0: मित्रों, कार्यक्रम चेरी के देश से में आपका फिर स्वागत है। रंजना जी, वैसे तो गर्मी में बाहर निकलना मुसीबत मोल लेने जैसा है
1: जी।
0: लेकिन जापान में गर्मियां आते ही हर जगह मात्सुरी और तरह तरह के मजेदार आयोजन होते हैं। देखिए ना, 7 जुलाई को वेबसाइट पर एक मस्ती भरी वीडियो डाली गई, आपने देखी क्या?
1: नहीं, मैंने तो जापानी कंपनियों में भारतीय कामगारों के बारे में वीडियो देखी
0: जी। उसमें भी काफी महत्वपूर्ण जानकारी है, लेकिन मैं जिस वीडियो की बात कर रही हूँ उसमें लोगों ने लकड़ी के टब में बैठकर तप्त कुंड में छोटे छोटे चप्पुओं की मदद से दौड़ लगाई।
1: अरे वाह,
0: लोगों की क्या मस्ती दिख रही है, कई लोगों की टब तो उलट भी गई। जानती है, शिजुओका के इतो शहर में 7 दशक से भी पहले से ये दौड़ का आयोजन किया जा रहा है।
1: अरे वाह, फिर तो जरूर देखनी पड़ेगी। मित्रों, आप भी देखिएगा। और हाँ, 21 जून को प्रसारित चेरी के देश से कार्यक्रम के तहत जापानी योग साधिका और वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता मीनाक्षी मियोको के साथ हुई भेंटवार्ता की वीडियो भी जारी हो चुकी है। वीडियो में आप उनकी योग यात्रा से जुड़ी तस्वीरें भी देख सकते हैं।
0: इस वीडियो की लिंक फेसबुक पर भी डाली गई है, जिस पर मोनिता मिधा की टिप्पणी है, इस शानदार उपलब्धि के लिए मीनाक्षी मियोको जी को बहुत बधाई। आप कई साल से योग साधना कर रही हैं और बड़ों और बच्चों को योग सिखा भी रही हैं। योग से यकीनन शरीर लचीला होता है, लेकिन उसके लिए नियमित अभ्यास जरूरी है।
1: मोनिता जी ने सही कहा, नियमित अभ्यास जरूरी है
0: जी। और देखिए, मीनाक्षी जी की जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो ये था कि उन्होंने सही मायने में योग का मूल सार समझा कि ये शरीर ही नहीं मन पर भी बड़ी गहराई से असर करता है। और देखिए, अभी एक लंबा सा पत्र है जिसमें बिहार आरा से राम कुमार नीरज ने लिखा है, इसे लिखते हैं, हाल ही में आपकी वेबसाइट पर प्रभाव श्रृंखला का एक वीडियो देखा, डाटा सेंटर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में नई तेजी। ये कार्यक्रम आज के समय के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषय पर आधारित है। ये नियमित श्रोता के रूप में मुझे ये प्रस्तुति ज्ञानवर्धक, संतुलित और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी। आज पूरी दुनिया डिजिटल तकनीक पर तेजी से निर्भर होती जा रही है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑनलाइन बैंकिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग जैसी लगभग हर डिजिटल सेवा के पीछे विशाल डेटा सेंटर काम करते हैं। आमतौर पर लोग इन सुविधाओं का उपयोग तो करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इन डेटा सेंटरों को 2400 घंटे चालू रखने के लिए कितनी अधिक बिजली की आवश्यकता होती है और इसके कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किस तेजी से बढ़ रहा है। आपके कार्यक्रम ने इसी अनदेखे पहलू को बहुत सरल और प्रभावशाली ढंग से सामने रखा।
1: नीरज जी ने आगे लिखा है, कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि इसमें केवल समस्या का उल्लेख नहीं किया गया, बल्कि उसके कारणों और संभावित समाधानों पर भी संतुलित चर्चा की गई। यह बताया गया कि यदि ऊर्जा की बढ़ती मांग को स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से पूरा नहीं किया गया तो भविष्य में जलवायु परिवर्तन की चुनौती और गंभीर हो सकती है। साथ ही ऊर्जा दक्ष डाटा सेंटर, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से इस समस्या को कम करने के प्रयासों की जानकारी भी दी गई। इससे कार्यक्रम केवल चेतावनी देने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाधान की दिशा भी दिखाता है। मुझे ये भी अच्छा लगा कि कार्यक्रम में वैज्ञानिक तथ्यों को इतनी सहज भाषा में प्रस्तुत किया गया कि सामान्य श्रोता भी विषय को आसानी से समझ सके। यही रेडियो जापान हिंदी सेवा की विशेषता रही है। वर्षों से यह सेवा जटिल अंतर्राष्ट्रीय और वैज्ञानिक विषयों को सरल, विश्वसनीय और निष्पक्ष रूप से अपने श्रोताओं तक पहुंचाती रही है।
0: नीरज जी आगे लिखते हैं, आज जब पूरी दुनिया एआई और डिजिटल तकनीकों की ओर तेजी से बढ़ रही है, तब ऐसे में ये कार्यक्रम याद दिलाते हैं कि तकनीकी विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के कार्यक्रम विशेष रूप से युवाओं, विद्यार्थियों और तकनीक से जुड़े लोगों तक अवश्य पहुँचाने चाहिए। इस उत्कृष्ट और विचारोत्तेजक कार्यक्रम के लिए NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा की पूरी टीम को हार्दिक बधाई।
1: वाह नीरज जी, आपने इस कार्यक्रम में उठाए गए मुद्दे पर कितनी गहराई से विवेचना की है। वाकई आपका पत्र पढ़कर सारी मेहनत सफल प्रतीत होती है। मित्रों, जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है, वेबसाइट पर शोज पन्ने पर ये उपलब्ध है, जरूर देखें। अब कुछ टिप्पणियां फेसबुक से। ताना बाता पर डाली गई रील पर कई लोगों ने अपनी मनोकामना लिखी है। देवेंद्र भंडारी की कामना है, मैं लॉन्ग टाइम तक जापान में रहना चाहता हूं और विश्व में शांति चाहता हूं। वहीं दुर्गेश नागनपुरे और करुणा उप्रेती ने ताली की इमोजी से रील का स्वागत किया है।
0: इसी रील पर मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर का कमेंट है, आपके कार्यक्रम टेक्नोलॉजी, ज्ञान विज्ञान से भरपूर और बेहद रोचक हैं। श्रोताओं के मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए सप्ताह में किसी भी एक दिन 30 मिनट का हिंदी गीतों का कार्यक्रम अवश्य शुरू करें। विजय जी, तारीफ के लिए शुक्रिया। जहाँ तक बात हिंदी गीतों की है, तो आप उन्हें भारत के विभिन्न प्रसारण केंद्रों से सुनी सकते हैं। हाँ, जापानी गीत हम आपको जरूर सुना सकते हैं।
1: तो आइए सुनते हैं ये जापानी गीत नात्सुगा किता, यानी गर्मियाँ आई। गायिका है वातानाबे मिसातो।

0: दोस्तों, इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अनुमति दीजिए अपनी सखी शांग्रिला जैन को
1: और रंजना सिंह को
0: सायोनारा, नमस्कार।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

यह है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का आपके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। उगते सूर्य के देश से सबसे पहले स्वीकार करें अपनी सखी शांग्रीला जैन का कोनिचिवा, नमस्कार और

0: आदाब
1: सभी दोस्तों को, रंजना सिंह का भी कोनिचिवा नमस्कार। फिर आया एक नया सप्ताह और हम आ गए लेकर आपके पत्रों के उत्तर और जापान के बारे में कई जानी अनजानी रोचक बातें।
0: उफ़ रंजना जी, इस गर्मी ने तो हाल बेहाल कर रखा है। काश हवा करने के लिए कोई पंखा मिल जाए।
1: अरे आपका हुक्म सर आंखों पर, आपने मांगा और हाजिर है ये पंखा।
0: अरे वाह क्या बात है, फोल्डिंग जापानी पंखा। एक समय था जब गर्मियों में ये अक्सर सभी के पास दिख जाता था।
1: समय के साथ थोड़ा बदलाव जरूर हुआ है। नए जमाने में युवाओं के हाथों में इन सुंदर पंखों की जगह ले ली है छोटे से इलेक्ट्रिक फैन ने।
0: सही कहा, लेकिन मुझे तो ये फोल्डिंग जापानी पंखे आज भी बड़े ही सुंदर और सुविधाजनक लगते हैं। तह करके ये आसानी से पर्स में आ जाते हैं और चार्जिंग का भी झंझट नहीं। वैसे रंजना जी, जानती हैं इन फोल्डिंग जापानी पंखों जिन्हें सेंसू कहा जाता है, उनका इतिहास काफी पुराना और रोचक है।
1: जी, कहीं पढ़ा था कि ये फोल्डिंग पंखे जापान में करीब 9वीं शताब्दी तक बनने शुरू हुए थे। शुरुआत में तो ये सिर्फ 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 सेंटीमीटर लंबी लकड़ी की पट्टियों में एक सिरे पर छेद करके और उन्हें वहां बांध कर बनाए जाते थे, जो खुलने पर अंग्रेजी के वी अल्फाबेट का आकार लेते थे।
0: बाद में इनका आकार हाथ में हिलाने लायक छोटा हो गया था, लेकिन उससे पहले लकड़ियों की पट्टियों से बने इन पंखों को कमरे में सजावट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इन पर खूबसूरत चित्रकारी भी की जाती थी। फिर जब इनका आकार छोटा हुआ तो ये कुलीन वर्ग के लोग इससे हवा करने के साथ ही आम जन से अपना चेहरा ढकने और शाही दरबार की महत्वपूर्ण बातों या कविता लिखने के लिए भी इस्तेमाल करने लगे।
1: वाह क्या क्या अनूठे उपयोग थे। पंखों को नोटबुक की तरह इस्तेमाल भी किया जाता था। वहीं बीतते समय के साथ इनकी खूबसूरती बढ़ती गई। लकड़ी की पट्टियां एकदम पतली और नाजुक हो गई और उन पर कागज या कपड़ा चिपकाया जाने लगा जिस पर सुंदर चित्रकारी की गई होती है और खास तरीके से इनकी तह की जाती थी। 11वीं सदी तक तो ये अभिजात वर्ग की महिलाओं का फैशन स्टेटमेंट बन गया था, उनके पोशाक का अभिन्न हिस्सा।
0: और हाँ, गर्मियों में ये हमारे पर्स की जरूरी सामग्री भी है। देखिए, जापान की पारंपरिक मंच कला नो और काबुकी तथा नृत्यों में भी इनका खूब उपयोग किया जाता है। पंखा हिलाकर हाथों और कलाइयों की अदा को और बढ़ाया जाता है, साथ ही इनसे कलाकार अपने भाव भी अभिव्यक्त करते हैं।
1: यानी एक अदना सा पंखा जिसके अनगिनत उपयोग।
0: बिल्कुल सही कहा, गुस्सा दिखाने के लिए पंखा झटक दो और प्यार दर्शाने के लिए धीरे से कलाई को घुमा दो। वैसे भारत जैसे गर्म देश में भी हाथ पंखों का लंबा इतिहास है। हर प्रांत में इन पर कढ़ाई और सजावट की अलग अलग शैली होती है।
1: तो मित्रों, आप हमें बताइए, क्या आपके यहाँ आज भी हाथ वाले पंखे इस्तेमाल होते हैं और ये किससे बनाए जाते हैं?
0: आपके जवाब और हो सके तो आपके यहाँ के पंखों की तस्वीर का हमें इंतजार है।
1: जी, इंतजार तो श्रोताओं को भी है अपने पत्र सुनने का।
0: तो चलिए बिना देर किए लेते हैं ये पत्र जिसने लिखा है ओडिशा के सिंगा से। नाम तो आप समझ ही गई होंगी, हमारे नियमित श्रोता सुरेश अग्रवाल ने। लिखते हैं 5 जुलाई को प्रसारित चेरी के देश से कार्यक्रम के अंतर्गत जापान में सुख शांति अमन और विश्व कल्याण की कामना के साथ मनाए जाने वाले ताना बाता उत्सव के संबंध में प्रस्तुत जानकारी अत्यंत रोचक, ज्ञानवर्धक और हृदय स्पर्शी लगी। इस पर्व की परंपराओं, उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा मानवता के लिए उसमें निहित मंगल कामनाओं से परिचित होकर मन सचमुच पुलकित हो उठा। आज जब विश्व का एक बड़ा भाग विभिन्न प्रकार के संघर्षों, युद्धों और अशांति से जूझ रहा है, तो ऐसे में ताना बाता जैसे पर्व का संदेश और भी अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है। हमारी भी यही हार्दिक कामना है कि दुनिया से वैमनस्य और हिंसा का अंत हो तथा ये सुंदर पृथ्वी सभी के लिए प्रेम, सौहार्द, शांति और भाईचारे का सुरक्षित एवं सुखद

0: बसेरा बने। कार्यक्रम के समापन पर ड्रीम्स कम ट्रू समूह द्वारा प्रस्तुत गीत भी अत्यंत मधुर, कर्णप्रिय और मन को छू लेने वाला लगा। जानकारी और संगीत का यह सुंदर समन्वय कार्यक्रम को और भी यादगार बना गया। श्रोताओं के लिए प्रत्येक सप्ताह इतनी सुंदर, ज्ञानवर्धक और आत्मीय रेडियो चौपाल सजाने हेतु आप सभी का हार्दिक धन्यवाद एवं साधुवाद।
1: सुरेश जी, हर सप्ताह बिना नागा पत्र लिखने के लिए हृदय से आभार।
0: सचमुच जितना इंतजार श्रोताओं को अपने पत्र सुनने का होता है ना, उतना ही इंतजार मुझे सुरेश जी की विशेष टिप्पणी का होता है। रंजना जी, साल ताना बाता के अवसर पर आपकी क्या मनोकामना रही?
1: मेरी मनोकामना तो वही है जो आज सारी दुनिया मांग रही है, कि जल्द से जल्द ये युद्ध समाप्त हो और पूरे विश्व में शांति आए। साथ ही ये भी इच्छा है कि मैं मरते दम तक स्वावलंबी रहूं।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: और आप बताइए, आप क्या मांगती हैं?
0: देखिए, चेरी के देश से कार्यक्रम के प्रस्तोता की क्या इच्छा हो सकती है, बस यही ना कि ज्यादा से ज्यादा श्रोता मित्र कार्यक्रम सुने और बड़ी तादाद में हमें पत्र भी लिखें।
1: जी हाँ, लंबे चौड़े पत्र ना सही, 2-3 लाइनों में अपनी प्रतिक्रिया तो अवश्य ही दी जा सकती है।
0: बिल्कुल, पत्र लिखने की प्रक्रिया को हमने आपके लिए आसान भी कर दिया है। बस वेबसाइट खोलिए और होम पेज पर सबसे ऊपर बैनर पर लिखा है यहाँ क्लिक कर संदेश भेजें। साथ ही कार्यक्रम के विवरण में भी यही लाइन लिखी है, जिसे क्लिक कर आप तुरंत संदेश भेजने वाले पन्ने पर जा सकते हैं।
1: जी हाँ, ध्यान रखें कि संदेश भेजने के लिए अब बस यही एक लिंक है।
0: याद रखें, हमसे पूछे कि पन्ने पर भेजे संदेश और प्रतिक्रियाएं अब हम चेरी के देश से कार्यक्रम में शामिल नहीं कर सकेंगे। हमारा आपसे अनुरोध है कि कृपया हिंदी सेवा के लिए कोई संदेश या प्रतिक्रिया हमसे पूछे पन्ने के माध्यम से ना भेजें। अगर आपने अपने कंप्यूटर पर उस लिंक को सेव कर रखा है तो उसे डिलीट करके नई लिंक को अपनाएं।
1: अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं उत्तर प्रदेश में बांदा, जहां से हमारे एक पुराने श्रोता संतोष कुमार सोनी लिखते हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपका बहुत पुराना श्रोता हूँ। आपको याद है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप मेरे पुराने पत्र देख सकते हैं जो आपके पास होंगे। वर्ष 1999 से 2011 के बीच मैंने रेडियो पर आपको नियमित सुना। आपसे कई बार बातचीत हुई। बस आपसे अनुरोध है, यदि आपके पास सुबोध जापानी की कोई सामग्री हो तो भेज दीजिए।
0: संतोष कुमार सोनी जी, एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा परिवार में आपका पुनः स्वागत है। और देखिए ना, हम अपने श्रोताओं को तो हमेशा याद रखा करते हैं, पर श्रोता मित्र ही इतने साल के लिए हमसे दूरी बना लेते हैं। इतने बरस कहाँ व्यस्त रह गए, सब खैरियत तो थी ना?
1: सही कहा, हम बिना रुके निर्बाध रूप से लगातार सालों से प्रसारण करते आ रहे हैं।
0: जी, पिछले साल तो हमने जापान के हिंदी भाषा में प्रसारण की 70वीं वर्षगांठ भी बनाई। इस अवसर पर आयोजित विशेष प्रसारण सुने क्या आपने संतोष जी? और जहाँ तक बात जापानी भाषा सिखाने की पुस्तक की है, तो अब देखिए पेपरलेस का जमाना है, आपको ये पुस्तक वेबसाइट पर मिल जाएगी। पठन सामग्री के साथ ही इसके ऑडियो भी उपलब्ध हैं, आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और जब चाहें पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। आपके मित्र हों या बच्चे, हर कोई इन्हें अपने डिवाइस पर निशुल्क डाउनलोड कर सकता है।
1: पत्रों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले नोट कर लीजिए हमारी फ्रीक्वेंसी।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
0: मित्रों, कार्यक्रम चेरी के देश से में आपका फिर स्वागत है। रंजना जी, वैसे तो गर्मी में बाहर निकलना मुसीबत मोल लेने जैसा है।

0: जी
1: लेकिन जापान में गर्मियां आते ही हर जगह मात्सुरी और तरह तरह के मजेदार आयोजन होते हैं। देखिए ना, 7 जुलाई को वेबसाइट पर एक मस्ती भरी वीडियो डाली गई, आपने देखी क्या?
0: नहीं, मैंने तो जापानी कंपनियों में भारतीय कामगारों के बारे में वीडियो देखी।
1: जी, उसमें भी काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। लेकिन मैं जिस वीडियो की बात कर रही हूँ, उसमें लोगों ने लकड़ी के टब में बैठकर तप्त कुंड में छोटे छोटे चप्पुओं की मदद से दौड़ लगाई।
0: अरे वाह,
1: लोगों की क्या मस्ती दिख रही है, कई लोगों की टब तो उलट भी गई। जानती है, शिजुओका के इतो शहर में 7 दशक से भी पहले से ये दौड़ का आयोजन किया जा रहा है।
0: अरे वाह, फिर तो जरूर देखनी पड़ेगी। मित्रों, आप भी देखिएगा। और हाँ, 21 जून को प्रसारित चेरी के देश से कार्यक्रम के तहत जापानी योग साधिका और वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता मीनाक्षी मियोको के साथ हुई भेंटवार्ता की वीडियो भी जारी हो चुकी है। वीडियो में आप उनकी योग यात्रा से जुड़ी तस्वीरें भी देख सकते हैं।
1: इस वीडियो की लिंक फेसबुक पर भी डाली गई है, जिस पर मोनिता मिधा की टिप्पणी है, इस शानदार उपलब्धि के लिए मीनाक्षी मियोको जी को बहुत बधाई। आप कई साल से योग साधना कर रही हैं और बड़ों और बच्चों को योग सिखा भी रही हैं। योग से यकीनन शरीर लचीला होता है, लेकिन उसके लिए नियमित अभ्यास जरूरी है।
0: मोनिता जी ने सही कहा, नियमित अभ्यास जरूरी है
1: जी। और देखिए, मीनाक्षी जी की जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो ये था कि उन्होंने सही मायने में योग का मूल सार समझा कि ये शरीर ही नहीं मन पर भी बड़ी गहराई से असर करता है। और देखिए, अभी एक लंबा सा पत्र है जिसमें बिहार आरा से राम कुमार नीरज ने लिखा है। इसे लिखते हैं, हाल ही में आपकी वेबसाइट पर प्रभाव श्रृंखला का एक वीडियो देखा, डाटा सेंटर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में नई तेजी। ये कार्यक्रम आज के समय के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषय पर आधारित है। ये नियमित श्रोता के रूप में मुझे ये प्रस्तुति ज्ञानवर्धक, संतुलित और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी। आज पूरी दुनिया डिजिटल तकनीक पर तेजी से निर्भर होती जा रही है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑनलाइन बैंकिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग जैसी लगभग हर डिजिटल सेवा के पीछे विशाल डेटा सेंटर काम करते हैं। आमतौर पर लोग इन सुविधाओं का उपयोग तो करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इन डेटा सेंटरों को 2400 घंटे चालू रखने के लिए कितनी अधिक बिजली की आवश्यकता होती है और इसके कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किस तेजी से बढ़ रहा है। आपके कार्यक्रम ने इसी अनदेखे पहलू को बहुत सरल और प्रभावशाली ढंग से सामने रखा।
0: नीरज जी ने आगे लिखा है, कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि इसमें केवल समस्या का उल्लेख नहीं किया गया, बल्कि उसके कारणों और संभावित समाधानों पर भी संतुलित चर्चा की गई। यह बताया गया कि यदि ऊर्जा की बढ़ती मांग को स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से पूरा नहीं किया गया तो भविष्य में जलवायु परिवर्तन की चुनौती और गंभीर हो सकती है। साथ ही ऊर्जा दक्ष डाटा सेंटर, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से इस समस्या को कम करने के प्रयासों की जानकारी भी दी गई। इससे कार्यक्रम केवल चेतावनी देने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाधान की दिशा भी दिखाता है। मुझे ये भी अच्छा लगा कि कार्यक्रम में वैज्ञानिक तथ्यों को इतनी सहज भाषा में प्रस्तुत किया गया कि सामान्य श्रोता भी विषय को आसानी से समझ सके। यही रेडियो जापान हिंदी सेवा की विशेषता रही है। वर्षों से यह सेवा जटिल अंतर्राष्ट्रीय और वैज्ञानिक विषयों को सरल, विश्वसनीय और निष्पक्ष रूप से अपने श्रोताओं तक पहुंचाती रही है।
1: नीरज जी आगे लिखते हैं, आज जब पूरी दुनिया AI और डिजिटल तकनीकों की ओर तेजी से बढ़ रही है, तब ऐसे में ये कार्यक्रम याद दिलाते हैं कि तकनीकी विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के कार्यक्रम विशेष रूप से युवाओं, विद्यार्थियों और तकनीक से जुड़े लोगों तक अवश्य पहुंचाने चाहिए। इस उत्कृष्ट और विचारोत्तेजक कार्यक्रम के लिए NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा की पूरी टीम को हार्दिक बधाई।
0: वाह नीरज जी, आपने इस कार्यक्रम में उठाए गए मुद्दे पर कितनी गहराई से विवेचना की है। वाकई आपका पत्र पढ़कर सारी मेहनत सफल प्रतीत होती है। मित्रों, जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है, वेबसाइट पर शोज पन्ने पर ये उपलब्ध है, जरूर देखें। अब कुछ टिप्पणियां फेसबुक से। ताना बाता पर डाली गई रील पर कई लोगों ने अपनी मनोकामना लिखी है। देवेंद्र भंडारी की कामना है, मैं लॉन्ग टाइम तक जापान में रहना चाहता हूँ और विश्व में शांति चाहता हूँ। वहीं दुर्गेश नागनपुरे और करुणा उप्रेती ने ताली की इमोजी से रील का स्वागत किया है।
1: इसी रील पर मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर का कमेंट है, आपके कार्यक्रम टेक्नोलॉजी ज्ञान विज्ञान से भरपूर और बेहद रोचक हैं। श्रोताओं के मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए सप्ताह में किसी भी एक दिन 30 मिनट का हिंदी गीतों का कार्यक्रम अवश्य शुरू करें। विजय जी, तारीफ के लिए शुक्रिया। जहाँ तक बात हिंदी गीतों की है तो आप उन्हें भारत के विभिन्न प्रसारण केंद्रों से सुनी सकते हैं। हाँ, जापानी गीत हम आपको जरूर सुना सकते हैं।
0: तो आइए सुनते हैं ये जापानी गीत नात्सुगा किता यानी गर्मियां आई। गायिका है वातानाबे मिसातो।

0: दोस्तों, इसी के साथ NHK World जापान की हिंदी सेवा का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अनुमति दीजिए अपनी सखी शांग्रिला जैन को
1: और रंजना सिंह को
0: सायनारा, नमस्कार।

0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें। आइए दीवान खाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, वसीमा आबिद और खदीजा शाह।
2: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामईन को आदाब।
0: खलील साहब, आज आपको एक नई बात सुनाऊं?
1: जी जरूर बताएं।
0: आपको सुन के हैरत होगी और मुझे भी पहले पहल बहुत हैरत होती थी कि जापान में लोग गर्मियों में झींगरों की आवाज से लुत्फंदोज होते हैं।
1: कौन सा झींगर? वही जो हमारे यहाँ रात को घरों के अंदर शोर करता है, किताबों और कपड़ों को चाट जाता है, वही?
0: किताबों का दुश्मन बने वो भी झींगर की एक किस्म है, लेकिन आज बुनियादी तौर पर हम जिसका जिक्र करेंगे उसे अंग्रेजी में सिकाडा और जापानी में सेमी कहते हैं। सेमी या जैमी, ये जो दरख्तों पे बैठता है, दरख्तों में घूमता फिरता है, अमूमन सुबह या फिर दोपहर के वक्त शोर मचाता है, चहचहाता है।
1: अच्छा, वो काला और शफाफ परों वाला सिकाडा?
3: जी वही, जापान का झींगर। असल में जापानी लोग मौसमों के एहसास से न सिर्फ लुत्फंदोज होते हैं बल्कि उनकी कदर भी करते हैं।
0: जी बिल्कुल तुरस्का खदीजा। और जापानी लोगों का ख्याल है कि झींगर की आवाज़ सुनने से उन्हें बदलते मौसमों का एहसास होता है।
3: हाँ, गर्मी आने का एहसास, और जब झींगरों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आए तो इसका मतलब है कि असल गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, और अमूमन ये जुलाई के आखिर से सुनाई देना शुरू हो जाती हैं।
1: अच्छा, तो जो झींगर है वो गर्मी की आमद का नकारा है क्या?
3: जी बिल्कुल, झींगरों ने नकारा बजा दिया है खलील साहब। और कहा जाता है कि जापान में कमोबेश 32 अकसाम के झींगर पाए जाते हैं।
1: अच्छा चलें, तो आज आप उनका नाम ले लें, इस बहाने आपका इम्तिहान भी हो जाएगा।

0: झींगा नामा वसीमा ने शुरू किया था भाई, वही सुनाएंगी हमें।
1: हाँ जी हाँ जी, खलील साहब आपने झिंगर की एग्जाम में दिलचस्पी ली, इसका बहुत शुक्रिया। और अभी खदीजा साहबा ने बताया कि जापान में कमोबेश कहा जाता है कि 32 एग्जाम के झिंगर हैं। इन 32 एग्जाम में से मैंने सिर्फ 6 के नाम बताने हैं, सारे नहीं बताने, क्योंकि कुल एग्जाम का 96% हिस्सा उन टॉप 6 एग्जाम पर मुश्तमिल है। और ये अकसाम मकामी जंगलात और मकामी इलाकों में पाए जाने वाले झिंगरों की नुमाइंदा अकसाम समझी जा सकती हैं
2: जापान के अंदर।
1: जापान
0: जी
1: के अंदर।
0: अच्छा, इनमें जो है अबरा जेमी झिंगर की तादाद जापान में झिंगरों की कुल आबादी का तकरीबन निसफ हिस्सा है। जेमी झिंगर जापान भर में पाया जाता है और रोजमर्रा जिंदगी में कमोबेश हर एक से इसका वास्ता पड़ता है। तो आइए इसकी आवाज सुनते हैं।
1: जी ये था अबरा जैमी। तो बाकी एग्जाम है नीनी जैमी झिंगर, हिगुराशी जैमी झिंगर, सुकुसुकुबोशी जैमी झिंगर। खदीजा सही बोला मैंने?
0: हाँ मेरे ख्याल में।
1: और कुमा जैमी झिंगर और फिर मिनमिन जैमी झिंगर।
2: चले इसी बहाने आपकी याददाश्त का इम्तिहान हो गया।
0: अच्छा वसीमा, ये जो अभी आपने मिन मिन जेमी जिगर कहा, इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आने का मतलब होता है कि असल गर्मियाँ शुरू हो गई और उमूमन ये जुलाई के आखिर से सुनाई देना शुरू होती हैं। और अब हम मिन मिन जेमी जिगर की आवाज़ सुनेंगे।
2: हाँ, जब तक बारिशों का मौसम था तब इतनी गर्मी नहीं थी। अब जुलाई का तीसरा हफ्ता जब से शुरू हुआ है तो गर्मी उरूज पर है।
0: जी, और जो सुकुसुकुबोशी जेमी झिंगर है उसकी आवाज़ का मतलब समझा जाता है कि अब खिजा आने वाली है, यानी मौसम तब्दील होने वाला है।
1: अच्छा सामिन, सुकुसुकुबोशी जेमी झिंगर जो है जापान भर में अमूमन पाया जाता है सिवाय ओकिनावा के। ये शहरी इलाकों से लेकर नशेबी पहाड़ी इलाकों तक में आबाद है और दुनिया भर में अपनी बड़ी पेचीदा सी मौसीकी वाली चहचहाहट के लिए जाना जाता है। और अक्सर दिन के वक्त चहचहाता है, वो नहीं है जो झिंगर रात को तंग करता है, किताबें खाता है, वो नहीं है। अच्छा, ये कई अकसाम के जंगलात में पाया जा सकता है, बागात में पाया जा सकता है, और चेरी और पर्सिमन यानी जापानी फल के दरख्त पे भी ये आ जाता है। तो आइए इसकी भी आवाज़ सुने। अरे प्यारी सुहानी आवाज़ थी। वैसे खदीजा, बरेसगीर के झिंगरों की आवाज़ से कितनी मुख्तलिफ आवाज़ है। हमारे यहाँ तो झिंगर ज़्यादातर ये दो किस्म की आवाज़ें निकालते हैं, और दूसरी है ना।
0: किसी पर लगता है जापानी जेमी झिंगर की आवाज़ का तर्जुमा कर दिया आपने। अच्छा वैसे वसीम, आपकी परफॉर्मेंस हमने सुन ली। खली साहब, आप भी अब जापान में मुकीम हैं, तो हमें अब ये सुनाइए कि यहाँ क्या कुछ देखा और कैसा पाया सब कुछ।
2: मैंने आपकी झिंगर कहानी तो सुन ली, अब जो दास्तान मैं सुना रहा हूँ उसका उन्वान है जापान जो मैंने देखा।
1: अरे वाह, इस सिलसिले में आज हम क्या सुन रहे हैं?
2: ये किस्सा है बिजली और पानी के कनेक्शन का।
0: यानी कि घर लेने वाला आपका मिशन मुकम्मल हो गया और अब बिजली और पानी के कनेक्शन का मिशन दरपेश है आपको।
2: जी बिल्कुल, टोक्यो में आखिरकार किराए का छोटा सा मकान ही मिल ही गया है। दिल ने सुख का सांस लिया, लेकिन अगले ही लम्हे प्रॉपर्टी एजेंट ने एक ऐसा जुमला कहा कि सांस वहीं अटक गई।
1: वो सुख वाली
2: बिजली और पानी के कनेक्शन उसने कहा कि आपने खुद लगवाने हैं। अब सच पूछे तो मेरे पाँव तले से जमीन निकल गई। वजह यह नहीं थी कि कनेक्शन लगवाने थे, वजह यह थी कि चंद महीने पहले पाकिस्तान में बिजली का कनेक्शन लेने का तजुर्बा अभी तक हाफजे पर ऐसे सब था जैसे किसी सरकारी दफ्तर के रजिस्टर पर लगी मोहर।
1: अब एक और मोहर दरपेश आ गया।
2: बंदा एक खिड़की से दूसरी खिड़की, फिर तीसरे कमरे, और फिर जवाब मिलता, साहब अभी मीटिंग में हैं। और आखिर में किसी न किसी फाइल को पहिए लगाने की गैर एलानिया मगर मारूफ रिवायत,
0: जिस रिवायत का बेड़ा गरक हो।
2: अब सो मैं दफ्तर में बैठा यही हिसाब लगा रहा था कि जापानी जबान भी अभी पूरी तरह नहीं आती, यहाँ किस किस दफ्तर के चक्कर लगाऊंगा, किससे दरखास्त करूंगा और किसको अपनी बेबसी समझाऊंगा।
0: समझ गए जी। वैसे इस जगह आपको कोई

0: उदास सा गाना गाना
1: मैं था। सुनने की कोशिश कर रहा था लेकिन ऑफिस में था ना। इतने में कोलीग ने पूछ लिया कि खैरियत है। मैंने कहा किराए का घर तो मिल गया है, अब बिजली और पानी के कनेक्शन का मसला है। वो मुस्कुराई और कहने लगी, इसमें मसला क्या है?
0: हाय मुस्कुराहट कैसी थी भला वो मुस्कुराहट?
1: मैं अब करके नहीं दिखा सकता। अच्छा, फिर उन्होंने मुझे समझाया कि जापान में बिजली, गैस और पानी जैसी सहूलतें मुख्तलिफ कंपनियां फराहम करती हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे पाकिस्तान में मुख्तलिफ मोबाइल कंपनियां मोबाइल कनेक्शन देती हैं। जिस कंपनी की सर्विस पसंद आए उसी से कनेक्शन ले लीजिए।
0: अरे वाह।
1: फिर उन्होंने दो कंपनियों के नाम मुझे बताए और उनके नीर्ख और सहूलतें समझाईं और बोली, मैं भी यही इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने कहा चलिए फिर मैं भी यही ले लेता हूँ।
0: अब ताबेदार,
1: बस और कोई चारा नहीं था। तो उन्होंने मेरा फ़ोन लिया, कंपनी की वेबसाइट खोली, मेरा नाम, पता और फ़ोन नंबर दर्ज किया, फिर पूछा किस तारीख और किस वक्त से कनेक्शन चाहिए। मैंने तारीख और वक्त बताया। उन्होंने स्क्रीन पर आखिरी बटन दबाया, फ़ोन मेरी तरफ बढ़ाया और बड़े इत्मीनान से बोली, हो गया।
0: हो गया, बात है।
1: मुझे यकीन नहीं आया। मैंने दिल में कहा कि शायद मेरे साथ मजाक कर रही हैं या फिर असल इम्तिहान अब शुरू होगा, लेकिन इम्तिहान तो ख़त्म हो चुका था। जब मैं नए घर में दाखिल हुआ तो बिजली भी मौजूद, पानी भी मौजूद, न किसी दफ्तर के चक्कर, न किसी बाबू साहब की मेज़, न किसी फाइल की गर्द झाड़नी पड़ी, न किसी फाइल को पहिए लगाने की ज़रूरत पेश आई।
0: अरे वो मोहर भी नहीं।
1: मोहर भी नहीं। अलबत्ता इसके बाद एक और इंकशाफ हुआ। मैंने पाकिस्तान से लाया हुआ एक बर्की आला चलाना चाहा तो मालूम हुआ कि जापान की जो बिजली है वो भी पाकिस्तान से मुख्तलिफ है।
0: जी, बंदे भी मुख्तलिफ, बिजली भी मुख्तलिफ। वैसे शरीफ बिजली है यहाँ।
1: इनोसेंट बिजली। यहाँ बिजली 100 वोल्ट की है जबकि पाकिस्तान में लगभग 230 वोल्ट हम इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर पाकिस्तान से कोई बर्की सामान साथ ले आए तो पहले इसकी प्लेट जरूर देख लीजिए, वरना हो सकता है कि मशीन तो बच जाए लेकिन आपकी उम्मीदें जरूर शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी।
0: मुस्कुरा कर।
1: फिर प्लग भी अलग। जापान में ए टाइप प्लग इस्तेमाल होते हैं जिनकी दो चिपटी पिने बिल्ली के आंखों की तरह लगती हैं। जबकि हमारे यहाँ ज्यादातर सी टाइप प्लग राइज हैं जिनमें दो गोल पिने होती हैं। अलबत्ता इस मुश्किल का भी जापानी अंदाज का एक सादा हल मौजूद है, एक यूनिवर्सल प्लग खरीद लीजिए, फिर ना जापानी प्लग को आपसे शिकायत रहेगी और ना पाकिस्तानी सामान को।
0: अरे वाह, यूनिवर्सल प्लग, जिंदाबाद। खलील साहब ने खदीजा क्या नक्शा खींच दिया, बिजली और पानी का कनेक्शन यहीं लगता है। सब तालियां तालियां होनी चाहिए कि इनको मिल गया ये कनेक्शन। अच्छा जी, यूनिवर्सल प्लग वाली बात तो बड़ी अहम है। यहाँ जो सामान लाते हैं उसका मसला तो हो जाता है, लेकिन यहाँ जापान से जब कोई बर्की आला पाकिस्तान ले जाए तो वहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही मसला दरपेश होता है। वजह वही कि जापान की बिजली पाकिस्तान से मुख्तलिफ। सीधी सादी जो हुई ना,
2: वॉशिंग मशीन लेके गई थी।
0: नहीं, दिमाग खराब है मेरा।
2: अच्छा खलील साहब, उम्मीद है जापान में कुछ ना कुछ नया देखते रहेंगे, हमें हमारे सामने इनको महसूस करते रहेंगे और हम मुंतजिर रहेंगे खलील साहब का प्रोग्राम जापान जो मैंने देखा। इसके नित नए मौजूद के हम मुंतजिर रहेंगे। तो सामने प्रोग्राम का सिलसिला जारी है।
3: ये NHK World जापान की उर्दू सर्विस है। ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज़ पर सुनी जा सकती हैं। इंटरनेट पर आप हमारे प्रोग्राम nhk.jp/urdu पर सुन सकते हैं।
0: जी, और अब वक्त हुआ है मौसीकी का, और आज सुनाए जाने वाले गीत का उन्वान है सेमी यानी झींगर। इसको पेश करने वाले हैं काजुयोशी साइतो।
2: साइतो साहब 22 जून 1966 को जापान के तोचिगी प्रीफेक्चर में पैदा हुए। 25 अगस्त 1993 को उन्होंने अपने सिंगल बुक नो मीता बीटल्स वा टीवी नो नाका, यानी वो बीटल्स जिन्हें मैंने टीवी पर देखा के साथ अपना कैरियर का आगाज किया। और अगले साल उन्होंने अरुते कायरो यानी घर को चलो की रिलीज के साथ बड़ी वसी तवज्जो हासिल की। उनके मशहूर गाने जिनमें उता उताई नो बहलाद यानी गुलूकार का गीत और फिर शादी का गाना जुत्तो सुकी दत्ता यानी मैंने हमेशा तुमसे मोहब्बत की और यसाशी को नारिताई मैं मेहरबान बनना चाहता हूँ, ये सब मदाहों और फनकारों दोनों में मकबूल क्लासिक बन चुके हैं।
1: ایک غیر معمولی لائف پرفارمر کے طور پر بڑے پیمانے پر تسلیم شدہ سائتو نے سولو پرفارمنس سے لے کر فل بینڈ کنسرٹ کے ساتھ بھی اپنے فن کا جادو جگایا. اپنے ریکارڈنگ اور پرفارمنس کیریئر کے علاوہ وہ مختلف فنکاروں اور موسیقاروں کے ساتھ گانے لکھنے، پروڈیوس کرنے اور تعاون میں بھی سرگرم ہیں.
4: اچھا، اپنے ڈیبیو کی 30ویں سالگرہ منانے کے بعد کازویوشی سائتو ایک فعال اور متنوع کیریئر جاری رکھے ہوئے ہیں. وہ مسلسل موسیقی کے نئے انداز اور تخلیقی تعاون کو دریافت کر رہے ہیں.
1: اراتا صاحبہ کے مطابق آج سنوایا جانے والا گیت سیمی یعنی جھینگر اداس گرمیوں کا گانا ہے، جس میں ایک آدمی گرم مرطوب دن گھومتا ہے اور اس کے ساتھ تنہائی اور کچھ کھونے کا بڑھتا ہوا احساس اسے ہوتا ہے. جھینگر شدید دھوپ اور غائب ہوتے ہوئے سائے زندگی کی ناپائیداری اور اس احساس کی علامت ہیں کہ کوئی اہم شخص چلا گیا ہے.
2: اس گیت کے بولوں میں مرطوب موسم اور کھڑکی سے چپکے ایک جھینگر کا ذکر ہے جو چہچہا رہا ہے. تو آئیے سنتے ہیں.

0: जी सामिन, काजुयोशी साइतो का गीत सेमी यानी झिंगर हमने सुना, आप सबको कैसा लगा? अब फिर झिंगर की कुछ बातें करेंगे।
1: हमारे अमले के जापानी रुकन युकी यासुमोतो बता रहे थे कि मगरबी जापान के झिंगर की आवाज़ जापान के मशरकी हिस्से के झिंगरों से कुछ मुख्तलिफ होती है।
0: असल में जो अपने हमारे यासुमोतो साहब हैं, उनका आबाई जो मकाम है, आबाई शहर समझ लें, वो मगरबी जापान का हिरोशिमा है ना, तो वहीं की बातें बताएंगे ना। अच्छा, मुझे उन्होंने बताया कि बचपन में जब वो हिरोशिमा में थे तो उन्होंने सिर्फ कुमा जैमी झिंगर और अबरा जैमी झिंगर और नीनी जैमी झिंगर की आवाज़ें सुनी थी।
2: क्योंकि यासुमोतो तो कहते हैं कि उन्होंने हिरोशिमा में मिन मिन जैमी झिंगरों की आवाज़ कभी नहीं सुनी, लेकिन वसीमा मैंने तो टोक्यो में काफ़ी सुनी है।
0: है ना, मेरी तो ख्वाहिश है, तमन्ना है और दुआ है कि खिजा की नवीद सुनाने वाले सुकुसुकुबोशी झिंगर भाई का मौसम जल्दी जल्दी आ जाए।
1: हाँ, मैंने सुना है कि टोक्यो में जुलाई के वस्त से अगस्त के वस्त तक सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो अभी जरा सांस लीजिए, कुछ बर्दाश्त कीजिए।
0: वाह, आप भी शायर हो गए। अच्छा, इस शेर से मुझे जापान की शायरी की सिंफ हाइकू याद आ गई।
2: जी बिल्कुल, हाइकू दरअसल फितरत की शायरी है, जो फितरत में मौजूद छोटी छोटी हयातियात यानी मसलन फूल, परिंदे या हशरातुल अर्ज वगैरह पर रोशनी डालती हैं। बुनियादी कवायद के मुताबिक 5-7-5 की तरतीब में 17 हरूफ में लिखी जाने वाली हाइकू में मौसम का एक इस्तियारा या लफ्ज़ भी शामिल होता है जो साल के वक्त मौसम की निशानदेही करता है।
1: तो मौसम और झिंगर का तो मेरे ख्याल में चोली दामन का साथ है, तो क्या झिंगर के मौसम पर भी हाइकूज लिखी गई हैं?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, दुरुस्त समझे, जवाब दुरुस्त है। मौसम गर्मा या खिजा की तर्जमानी के लिए झिंगर पर भी हाइकू मौजूद हैं, और जापान में हाइकू के मशहूर शायर बल्कि हाइकू के बानी शायर मात्सुओ बाशो की एक जापानी हाइकू है, शिजुका साया इवानी शिमी इरु सेमी नो कोए। इसका उर्दू तर्जमा है, हर सू खामोशी, उस पर चट्टानों को छेदती झिंगर की आवाज़।
1: वाह, इन चंद अल्फाज ने ही समा बांध दिया।
0: अच्छा, इस अल्फाज से जो कानों को छेदती वाली बात है, उससे मुझे खासतौर पे झिंगर की वो वाली किस्म याद आती है, सुकुसुकुबोशी, जो उसकी आवाज़ वाकई कानों को छेदती महसूस होती है, अपने परों को रगड़ के निकालता है ना वो आवाज़।
1: अच्छा।
0: तो ये था जापान की एक शायरी हाइकू जिसमें झिंगर का जिक्र है। हमारे पाको हिंद में भी तो झिंगर पर शायरी हुई है ना।
1: हाँ, अब खदीजा साहिबा से झिंगर पर नज्म सुनते हैं।
2: जरूर जरूर जरूर जरूर, नज्म और वो भी झिंगर पर।
1: कोई भी सुनाइए।
2: जी जरूर, ख्वाजा हसन निजामी की नज्म झिंगर का जनाजा पेश है भाई, उसके चंद अशआर पेश है।
1: अच्छा।
2: न बिच्छू का सा जहरीला डंग था, न सांप का सा डसने वाला फन था, ना कौवे की सी शरीर चोंच, ना बुलबुल की मानिंद फूलों की इश्कबाजी, शाम के वक्त मुसलसल बीन बजाता था।
0: वाह वाह, ये नज़्म
1: जबरदस्त। मेरे ख्याल में ये वो वाला झिंगर है जो हमारे यहाँ घरों में होते हैं पाकिस्तान में। झिंगर जिंदाबाद। चलिए अब सामीन से पूछ लेते हैं कि उनके इलाके में झिंगर शोर मचाते हैं या नहीं, और अगर मचाते हैं तो ये शोर किस तरह का होता है।
0: जी, लेकिन घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि हम कुछ और पैगाम दें। हमारे होम पेज nhk.jp/urdu पर सबसे नीचे मालूमात की सुर्खी तले एक लिंक है जिसका उनवान है,
2: हम आपकी आरा के मुंतजर हैं, इस्तेमाल की शरायत मंजूर होने की सूरत में हिदायत पर अमल करते हुए पैगाम रवाना कर दीजिए।
0: सामिन, हम आपके ढेरों पैगामात के मुंतजिर हैं। nhk.jp/urdu पर पैगामात भेजिए, और अब अपने मेजबानों को इजाजत दीजिए। अल्लाह।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: यह है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का आपके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। उगते सूर्य के देश से सबसे पहले स्वीकार करें अपनी सखी शांग्रीला जैन का कोनिचिवा, नमस्कार और आदाब।
1: सभी दोस्तों को रंजना सिंह का भी कोनिचिवा नमस्कार। फिर आया एक नया सप्ताह और हम आ गए लेकर आपके पत्रों के उत्तर और जापान के बारे में कई जानी अनजानी रोचक बातें।
0: उफ रंजना जी, इस गर्मी ने तो हाल बेहाल कर रखा है। काश हवा करने के लिए कोई पंखा मिल जाए।
1: अरे आपका हुक्म सर आंखों पर, आपने मांगा और हाजिर है ये पंखा।
0: अरे वाह क्या बात है, फोल्डिंग जापानी पंखा। एक समय था जब गर्मियों में ये अक्सर सभी के पास दिख जाता था।
1: समय के साथ थोड़ा बदलाव जरूर हुआ है। नए जमाने में युवाओं के हाथों में इन सुंदर पंखों की जगह ले ली है छोटे से इलेक्ट्रिक फैन ने।
0: सही कहा, लेकिन मुझे तो ये फोल्डिंग जापानी पंखे आज भी बड़े ही सुंदर और सुविधाजनक लगते हैं। तह करके ये आसानी से पर्स में आ जाते हैं और चार्जिंग का भी झंझट नहीं। वैसे रंजना जी जानती हैं, इन फोल्डिंग जापानी पंखों जिन्हें सेंसू कहा जाता है, उनका इतिहास काफी पुराना और रोचक है।
1: जी, कहीं पढ़ा था कि ये फोल्डिंग पंखे जापान में करीब 9वीं शताब्दी तक बनने शुरू हुए थे। शुरुआत में तो ये सिर्फ 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 सेंटीमीटर लंबी लकड़ी की पट्टियों में एक सिरे पर छेद करके और उन्हें वहां बांधकर बनाए जाते थे, जो खुलने पर अंग्रेजी के वी अल्फाबेट का आकार लेते थे।
0: बाद में इनका आकार हाथ में हिलाने लायक छोटा हो गया था, लेकिन उससे पहले लकड़ियों की पट्टियों से बने इन पंखों को कमरे में सजावट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इन पर खूबसूरत चित्रकारी भी की जाती थी। फिर जब इनका आकार छोटा हुआ तो ये कुलीन वर्ग के लोग इससे हवा करने के साथ ही आम जन से अपना चेहरा ढकने और शाही दरबार की महत्वपूर्ण बातों या कविता लिखने के लिए भी इस्तेमाल करने लगे।
1: वाह क्या क्या अनूठे उपयोग थे। पंखों को नोटबुक की तरह इस्तेमाल भी किया जाता था। वहीं बीतते समय के साथ इनकी खूबसूरती बढ़ती गई। लकड़ी की पट्टियां एकदम पतली और नाजुक हो गई और उन पर कागज या कपड़ा चिपकाया जाने लगा, जिस पर सुंदर

0: चित्रकारी की गई होती है और खास तरीके से इनकी तह की जाती थी। 11वीं सदी तक तो ये अभिजात वर्ग की महिलाओं का फैशन स्टेटमेंट बन गया था, उनके पोशाक का अभिन्न हिस्सा।
1: और हाँ, गर्मियों में ये हमारे पर्स की जरूरी सामग्री भी है। देखिए, जापान की पारंपरिक मंच कला नो और काबुकी तथा नृत्यों में भी इनका खूब उपयोग किया जाता है। पंखा हिलाकर हाथों और कलाइयों की अदा को और बढ़ाया जाता है, साथ ही इनसे कलाकार अपने भाव भी अभिव्यक्त करते हैं।
0: यानी एक अदना सा पंखा जिसके अनगिनत उपयोग।
1: बिल्कुल सही कहा, गुस्सा दिखाने के लिए पंखा झटक दो और प्यार दर्शाने के लिए धीरे से कलाई को घुमा दो। वैसे भारत जैसे गर्म देश में भी हाथ पंखों का लंबा इतिहास है। हर प्रांत में इन पर कढ़ाई और सजावट की अलग अलग शैली होती है।
0: तो मित्रों, आप हमें बताइए, क्या आपके यहाँ आज भी हाथ वाले पंखे इस्तेमाल होते हैं और ये किससे बनाए जाते हैं?
1: आपके जवाब और हो सके तो आपके यहाँ के पंखों की तस्वीर का हमें इंतजार है।
0: जी, इंतजार तो श्रोताओं को भी है अपने पत्र सुनने का।
1: तो चलिए बिना देर किए लेते हैं ये पत्र, जिसने लिखा है ओडिशा के सिंगा से। नाम तो आप समझ ही गई होंगी, हमारे नियमित श्रोता सुरेश अग्रवाल ने। लिखते हैं 5 जुलाई को प्रसारित चेरी के देश से कार्यक्रम के अंतर्गत जापान में सुख शांति अमन और विश्व कल्याण की कामना के साथ मनाए जाने वाले ताना बाता उत्सव के संबंध में प्रस्तुत जानकारी अत्यंत रोचक, ज्ञानवर्धक और हृदय स्पर्शी लगी। इस पर्व की परंपराओं, उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा मानवता के लिए उसमें निहित मंगल कामनाओं से परिचित होकर मन सचमुच पुलकित हो उठा। आज विश्व का एक बड़ा भाग विभिन्न प्रकार के संघर्षों, युद्धों और अशांति से जूझ रहा है, तो ऐसे में ताना बाता जैसे पर्व का संदेश और भी अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है। हमारी भी यही हार्दिक कामना है कि दुनिया से वैमनस्य और हिंसा का अंत हो तथा ये सुंदर पृथ्वी सभी के लिए प्रेम, सौहार्द, शांति और भाईचारे का सुरक्षित एवं सुखद बसेरा बने। कार्यक्रम के समापन पर ड्रीम्स कम ट्रू समूह द्वारा प्रस्तुत गीत भी अत्यंत मधुर, कर्णप्रिय और मन को छू लेने वाला लगा। जानकारी और संगीत का यह सुंदर समन्वय कार्यक्रम को और भी यादगार बना गया। श्रोताओं के लिए प्रत्येक सप्ताह इतनी सुंदर, ज्ञानवर्धक और आत्मीय रेडियो चौपाल सजाने हेतु आप सभी का हार्दिक धन्यवाद एवं साधुवाद।
0: सुरेश जी, हर सप्ताह बिना नागा पत्र लिखने के लिए हृदय से आभार।
1: सचमुच जितना इंतजार श्रोताओं को अपने पत्र सुनने का होता है ना, उतना ही इंतजार मुझे सुरेश जी की विशेष टिप्पणी का होता है। रंजना जी, इस साल ताना बाता के अवसर पर आपकी क्या मनोकामना रही?
0: मेरी मनोकामना तो वही है जो आज सारी दुनिया मांग रही है, कि जल्द से जल्द ये युद्ध समाप्त हो और पूरे विश्व में शांति आए। साथ ही ये भी इच्छा है कि मैं मरते दम तक स्वावलंबी रहूं।
1: अरे वाह, क्या बात है।
0: और आप बताइए, आप क्या मांगती हैं?
1: देखिए, चेरी के देश से कार्यक्रम के प्रस्तोता की क्या इच्छा हो सकती है, बस यही ना कि ज्यादा से ज्यादा श्रोता मित्र कार्यक्रम सुने और बड़ी तादाद में हमें पत्र भी लिखें।
0: जी हाँ, लंबे चौड़े पत्र ना सही, 2-3 लाइनों में अपनी प्रतिक्रिया तो अवश्य ही दी जा सकती है।
1: बिल्कुल, पत्र लिखने की प्रक्रिया को हमने आपके लिए आसान भी कर दिया है। बस वेबसाइट खोलिए और होम पेज पर सबसे ऊपर बैनर पर लिखा है यहाँ क्लिक कर संदेश भेजे। साथ ही कार्यक्रम के विवरण में भी यही लाइन लिखी है, जिसे क्लिक कर आप तुरंत संदेश भेजने वाले पन्ने पर जा सकते हैं।
0: जी हाँ, ध्यान रखें कि संदेश भेजने के लिए अब बस यही एक लिंक है।
1: याद रखें, हमसे पूछे कि पन्ने पर भेजे संदेश और प्रतिक्रियाएं अब हम चेरी के देश से कार्यक्रम में शामिल नहीं कर सकेंगे। हमारा आपसे अनुरोध है कि कृपया हिंदी सेवा के लिए कोई संदेश या प्रतिक्रिया हमसे पूछे पन्ने के माध्यम से ना भेजें। अगर आपने अपने कंप्यूटर पर उस लिंक को सेव कर रखा है तो उसे डिलीट करके नई लिंक को अपनाएं।
0: अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं उत्तर प्रदेश में बांदा। जहां से हमारे एक पुराने श्रोता संतोष कुमार सोनी लिखते हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपका बहुत पुराना श्रोता हूं। आपको याद है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप मेरे पुराने पत्र देख सकते हैं जो आपके पास होंगे। वर्ष 1999 से 2011 के बीच मैंने रेडियो पर आपको नियमित सुना। आपसे कई बार बातचीत हुई। बस आपसे अनुरोध है, यदि आपके पास सुबोध जापानी की कोई सामग्री हो तो भेज दीजिए।
1: संतोष कुमार सोनी जी, एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा परिवार में आपका पुनः स्वागत है। और देखिए ना, हम अपने श्रोताओं को तो हमेशा याद रखा करते हैं, पर श्रोता मित्र ही इतने साल के लिए हमसे दूरी बना लेते हैं। इतने बरस कहाँ व्यस्त रह गए, सब खैरियत तो थी ना?
0: सही कहा, हम बिना रुके निर्बाध रूप से लगातार सालों से प्रसारण करते आ रहे हैं।
1: जी, पिछले साल तो हमने जापान के हिंदी भाषा में प्रसारण की 70वीं वर्षगांठ भी मनाई। इस अवसर पर आयोजित विशेष प्रसारण सुने क्या आपने संतोष जी? और जहाँ तक बात जापानी भाषा सिखाने की पुस्तक की है, तो अब देखिए पेपरलेस का जमाना है। आपको ये पुस्तक वेबसाइट पर मिल जाएगी। पठन सामग्री के साथ ही इसके ऑडियो भी उपलब्ध हैं। आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और जब चाहें पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। आपके मित्र हों या बच्चे, हर कोई इन्हें अपने डिवाइस पर निशुल्क डाउनलोड कर सकता है।
0: पत्रों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले नोट कर लीजिए हमारी फ्रीक्वेंसी।
2: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।
1: मित्रों, कार्यक्रम चेरी के देश से में आपका फिर स्वागत है। रंजना जी, वैसे तो गर्मी में बाहर निकलना मुसीबत मोल लेने जैसा है
0: जी।
1: लेकिन जापान में गर्मियां आते ही हर जगह मात्सुरी और तरह तरह के मजेदार आयोजन होते हैं। देखिए ना, 7 जुलाई को वेबसाइट पर एक मस्ती भरी वीडियो डाली गई, आपने देखी क्या?
0: नहीं, मैंने तो जापानी कंपनियों में भारतीय कामगारों के बारे में वीडियो देखी
1: जी। उसमें भी काफी महत्वपूर्ण जानकारी है, लेकिन मैं जिस वीडियो की बात कर रही हूँ उसमें लोगों ने लकड़ी के टब में बैठकर तप्त कुंड में छोटे छोटे चप्पुओं की मदद से दौड़ लगाई।
0: अरे वाह,
1: लोगों की क्या मस्ती दिख रही है, कई लोगों की टब तो उलट भी गई। जानती है, शिजुओका के इतो शहर में 7 दशक से भी पहले से ये दौड़ का आयोजन किया जा रहा है।
0: अरे वाह, फिर तो जरूर देखनी पड़ेगी। मित्रों, आप भी देखिएगा। और हाँ, 21 जून को प्रसारित चेरी के देश से कार्यक्रम के तहत जापानी योग साधिका और वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता मीनाक्षी मियोको के साथ हुई भेंट वार्ता की वीडियो भी जारी हो चुकी है। वीडियो में आप उनकी योग यात्रा से जुड़ी तस्वीरें भी देख सकते हैं।
1: इस वीडियो की लिंक फेसबुक पर भी डाली गई है, जिस पर मोनिता मिधा की टिप्पणी है, इस शानदार उपलब्धि के लिए मीनाक्षी मियोको जी को बहुत बधाई। आप कई साल से योग साधना कर रही हैं और बड़ों और बच्चों को योग सिखा भी रही हैं। योग से यकीनन शरीर लचीला होता है, लेकिन उसके लिए नियमित अभ्यास जरूरी है।
0: मोनिता जी ने सही कहा, नियमित अभ्यास जरूरी है
1: जी। और देखिए, मीनाक्षी जी की जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो ये था कि उन्होंने सही मायने में योग का मूल सार समझा कि ये शरीर ही नहीं मन पर भी बड़ी गहराई से असर करता है। और देखिए, अभी एक लंबा सा पत्र है जिसमें बिहार आरा से राम कुमार नीरज ने लिखा है। इसे लिखते हैं, हाल ही में आपकी वेबसाइट पर प्रभाव श्रृंखला का एक वीडियो देखा, डाटा सेंटर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में नई तेजी। ये कार्यक्रम आज के समय के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषय पर आधारित है। ये नियमित श्रोता के रूप में मुझे ये प्रस्तुति ज्ञानवर्धक, संतुलित और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी। आज पूरी दुनिया डिजिटल तकनीक पर तेजी से निर्भर होती जा रही है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑनलाइन बैंकिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग जैसी लगभग हर डिजिटल सेवा के पीछे विशाल डेटा सेंटर काम करते हैं। आमतौर पर लोग इन सुविधाओं का उपयोग तो करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इन डेटा सेंटरों को 2400 घंटे चालू रखने के लिए कितनी अधिक बिजली की आवश्यकता होती है और इसके कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किस तेजी से बढ़ रहा है। आपके कार्यक्रम ने इसी अनदेखे पहलू को बहुत सरल और प्रभावशाली ढंग से सामने रखा।
0: नीरज जी ने आगे लिखा है, कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि इसमें केवल समस्या का उल्लेख नहीं किया गया, बल्कि उसके कारणों और संभावित समाधानों पर भी संतुलित चर्चा की गई। यह बताया गया कि यदि ऊर्जा की बढ़ती मांग को स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से पूरा नहीं किया गया तो भविष्य में जलवायु परिवर्तन की चुनौती और गंभीर हो सकती है। साथ ही ऊर्जा दक्ष डाटा सेंटर नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से इस समस्या को कम करने के प्रयासों की जानकारी भी दी गई। इससे कार्यक्रम केवल चेतावनी देने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाधान की दिशा भी दिखाता है। मुझे ये भी अच्छा लगा कि कार्यक्रम में वैज्ञानिक तथ्यों को इतनी सहज भाषा में प्रस्तुत किया गया कि सामान्य श्रोता भी विषय को आसानी से समझ सके। यही रेडियो जापान हिंदी सेवा की विशेषता रही है। वर्षों से यह सेवा जटिल अंतर्राष्ट्रीय और वैज्ञानिक विषयों को सरल, विश्वसनीय और निष्पक्ष रूप से अपने श्रोताओं तक पहुंचाती रही है।
1: नीरज जी आगे लिखते हैं, आज जब पूरी दुनिया एआई और डिजिटल तकनीकों की ओर तेजी से बढ़ रही है, तब ऐसे में ये कार्यक्रम याद दिलाते हैं कि तकनीकी विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के कार्यक्रम विशेष रूप से युवाओं, विद्यार्थियों और तकनीक से जुड़े लोगों तक अवश्य पहुंचाने चाहिए। इस उत्कृष्ट और विचार उत्तेजक कार्यक्रम के लिए एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा की पूरी टीम को हार्दिक बधाई।
0: वाह नीरज जी, आपने इस कार्यक्रम में उठाए गए मुद्दे पर कितनी गहराई से विवेचना की है। वाकई आपका पत्र पढ़कर सारी मेहनत सफल प्रतीत होती है। मित्रों, जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है, वेबसाइट पर शोज पन्ने पर ये उपलब्ध है, जरूर देखें। अब कुछ टिप्पणियां फेसबुक से। ताना बाता पर डाली गई रील पर कई लोगों ने अपनी मनोकामना लिखी है। देवेंद्र भंडारी की कामना है, मैं लॉन्ग टाइम तक जापान में रहना चाहता हूं और विश्व में शांति चाहता हूं। वहीं दुर्गेश नागनपुरे और करुणा उप्रेती ने ताली की इमोजी से रील का स्वागत किया है।
1: इसी रील पर मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर का कमेंट है, आपके कार्यक्रम टेक्नोलॉजी, ज्ञान विज्ञान से भरपूर और बेहद रोचक हैं। श्रोताओं के मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए सप्ताह में किसी भी एक दिन 30 मिनट का हिंदी गीतों का कार्यक्रम अवश्य शुरू करें। विजय जी, तारीफ के लिए शुक्रिया। जहाँ तक बात हिंदी गीतों की है, तो आप उन्हें भारत के विभिन्न प्रसारण केंद्रों से सुनी सकते हैं। हाँ, जापानी गीत हम आपको जरूर सुना सकते हैं।
0: तो आइए सुनते हैं ये जापानी गीत नात्सुगा किता, यानी गर्मियाँ आई। गायिका है वातानाबे मिसातो।

0: दोस्तों, इसी के साथ NHK World जापान की हिंदी सेवा का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अनुमति दीजिए अपनी सखी शांग्रिला जैन को
1: और रंजना सिंह को
0: सार

0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें। आइए दीवान खाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, वसीमा आबिद और खदीजा शाह।
2: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामईन को आदाब।
0: खलील साहब, आज आपको एक नई बात सुनाऊं?
1: जी जरूर बताएं।
0: आपको सुन के हैरत होगी और मुझे भी पहले पहल बहुत हैरत होती थी कि जापान में लोग गर्मियों में झिंगरों की आवाज से लुत्फंदोज होते हैं।
1: कौन सा झिंगर? वही जो हमारे यहाँ रात को घरों के अंदर शोर करता है, किताबों और कपड़ों को चाट जाता है, वही?
0: किताबों का दुश्मन बने, वो भी झिंगर की एक किस्म है। लेकिन आज बुनियादी तौर पर हम जिसका जिक्र करेंगे उसे अंग्रेजी में सिकाडा और जापानी में सेमी कहते हैं, सेमी या जैमी। ये जो दरख्तों पर बैठता है, दरख्तों में घूमता फिरता है, अमूमन सुबह या फिर दोपहर के वक्त शोर मचाता है, चहचहाता है।
1: अच्छा, वो काला और शफाफ परों वाला सिकाडा?
2: जी वही, जापान का झिंगर। असल में जापानी लोग मौसमों के एहसास से न सिर्फ लुत्फ अंदोज होते हैं बल्कि उनकी कदर भी करते हैं।
0: जी बिल्कुल दुरुस्त कहा खदीजा। और जापानी लोगों का ख्याल है कि झिंगर की आवाज सुनने से उन्हें बदलते मौसमों का एहसास होता है।
2: हाँ, गर्मी आने का एहसास, और जब झिंगरों की आवाज बहुत ज्यादा आए तो इसका मतलब है कि असल गर्मियाँ शुरू हो गई है, और अमूमन ये जुलाई के आखिर से सुनाई देना शुरू हो जाती है।
1: अच्छा, तो जो झिंगर है वो गर्मी की आमद का नकारा है क्या?
2: जी बिल्कुल, झिंगरों ने नकारा बजा दिया है खलील साहब। और कहा जाता है कि जापान में कमोबेश 32 अकसाम के झिंगर पाए जाते हैं।
1: अच्छा चलें, तो आज आप उनका नाम ले लें, इस बहाने आपका इम्तिहान भी हो जाएगा।
2: अरे झिंगर नामा वसीमा ने शुरू किया था भाई, वही सुनाएंगी हमें।
0: हाँ जी हाँ जी, खलील साहब आपने झिंगर की इकसाम में दिलचस्पी ली, इसका बहुत शुक्रिया। और अभी खदीजा साहबा ने बताया कि जापान में कमोबेश कहा जाता है कि 32 इकसाम के झिंगर हैं। इन 32 इकसाम में से मैंने सिर्फ 6 के नाम बताने हैं, सारे नहीं बताने, क्योंकि कुल इकसाम का 96% हिस्सा उन टॉप 6 इकसाम पर मुश्तमिल है, और ये अकसाम मकामी जंगलात और मकामी इलाकों में पाए जाने वाले झिंगरों की नुमाइंदा अकसाम समझी जा सकती हैं
1: जापान के अंदर।
0: जापान
2: जी
0: के अंदर।
2: अच्छा, इनमें जो है अबरा जेमी झिंगर की तादाद जापान में झिंगरों की कुल आबादी का तकरीबन निसफ हिस्सा है। जेमी झिंगर जापान भर में पाया जाता है और रोजमर्रा जिंदगी में कमोबेश हर एक से इसका वास्ता पड़ता है। तो आइए इसकी आवाज सुनते हैं।
0: जी ये था अबरा जैमी। तो बाकी इकसाम है नीनी जैमी झिंगर, हिगुराशी जैमी झिंगर, सुकुसुकुबोशी जैमी झिंगर। खदीजा सही बोला मैंने?
2: हाँ मेरे ख्याल में।
0: और कुमा जैमी झिंगर, और फिर मिनमिन जैमी झिंगर।
1: चले इसी बहाने आपकी याददाश्त का इम्तिहान हो गया।
2: अच्छा वसीमा, ये जो अभी आपने मिन मिन जेमी जिगर कहा, इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आने का मतलब होता है कि असल गर्मियाँ शुरू हो गई, और अमूमन ये जुलाई के आखिर से सुनाई देना शुरू होती हैं। और अब हम मिन मिन जेमी जिगर की आवाज़ सुनेंगे।

0: जी सामिन, काजुयोशी साइतो का गीत सेमी यानी झिंगर हमने सुना, आप सबको कैसा लगा? अब फिर झिंगर की कुछ बातें करेंगे।
1: हमारे अमले के जापानी रुकन यूकी यासुमोतो बता रहे थे कि मगरबी जापान के झिंगर की आवाज़ जापान के मशरकी हिस्से के झिंगरों से कुछ मुख्तलिफ होती है।
0: असल में जो अपने हमारे यासुमोतो साहब हैं, उनका आबाई जो मकाम है, आबाई शहर समझ लें, वो मगरबी जापान का हिरोशिमा है ना, तो वहीं की बातें बताएंगे ना। अच्छा, मुझे उन्होंने बताया कि बचपन में जब वो हिरोशिमा में थे तो उन्होंने सिर्फ कुमा जैमी झिंगर और अबरा जैमी झिंगर और नीनी जैमी झिंगर की आवाज़ें सुनी थी।
2: क्योंकि यासुमोतो तो कहते हैं कि उन्होंने हिरोशिमा में मिन मिन जैमी झिंगरों की आवाज़ कभी नहीं सुनी, लेकिन वसीमा मैंने तो टोक्यो में काफ़ी सुनी है।
0: है ना, मेरी तो ख्वाहिश है, तमन्ना है और दुआ है कि खिजा की नवीद सुनाने वाले सुकुसुकुबोशी झिंगर भाई का मौसम जल्दी जल्दी आ जाए।
1: हाँ, मैंने सुना है कि टोक्यो में जुलाई के वस्त से अगस्त के वस्त तक सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो अभी जरा सांस लीजिए, कुछ बर्दाश्त कीजिए।
0: वाह, आप भी शायर हो गए। अच्छा, इस शेर से मुझे जापान की शायरी की सिंफ हाइकू याद आ गई।
2: जी बिल्कुल, हाइकू दरअसल फितरत की शायरी है, जो फितरत में मौजूद छोटी छोटी हयातियात यानी मसलन फूल, परिंदे या हशरातुल अर्ज वगैरह पर रोशनी डालती हैं। बुनियादी कवायद के मुताबिक 5-7-5 की तरतीब में 17 हरूफ में लिखी जाने वाली हाइकू में मौसम का एक इस्तियारा या लफ्ज़ भी शामिल होता है जो साल के वक्त मौसम की निशानदेही करता है।
1: तो मौसम और झिंगर का तो मेरे ख्याल में चोली दामन का साथ है, तो क्या झिंगर के मौसम पर भी हाइकूज लिखी गई हैं?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, दुरुस्त समझे, जवाब दुरुस्त है। मौसम गर्मा या खिजा की तर्जमानी के लिए झिंगर पर भी हाइकू मौजूद हैं, और जापान में हाइकू के मशहूर शायर बल्कि हाइकू के बानी शायर मात्सुओ बाशो की एक जापानी हाइकू है, शिजुका साया इवानी शिमी इरु सेमी नो कोए। इसका उर्दू तर्जमा है, हर सू खामोशी उस पर चट्टानों को छेदती झिंगर की आवाज़।
1: वाह, इन चंद अल्फाज ने ही समा बांध दिया।
0: अच्छा, इस अल्फाज से जो कानों को छेदती वाली बात है, उससे मुझे ख़ासतौर पे झिंगर की वो वाली किस्म याद आती है, सुकुसुकुबोशी, जो उसकी आवाज़ वाकई कानों को छेदती महसूस होती है, अपने परों को रगड़ के निकालता है ना वो आवाज़।
1: अच्छा।
0: तो ये था जापान की एक शायरी हाइकू जिसमें झिंगर का जिक्र है। हमारे पाको हिंद में भी तो झिंगर पर शायरी हुई है ना।
1: हाँ, अब खदीजा साहिबा से झिंगर पर नज़्म सुनते हैं।
2: जरूर जरूर जरूर जरूर, नज़्म और वो भी झिंगर पर।
1: कोई भी सुनाइए।
2: जी जरूर, ख्वाजा हसन निज़ामी की नज़्म झिंगर का जनाजा पेश है भाई, उसके चंद अशआर पेश है।
1: अच्छा।
2: न बिच्छू का सा जहरीला डंग था, न सांप का सा डसने वाला फन था, ना कौवे की सी शरीर चोंच, ना बुलबुल की मानिंद फूलों की इश्कबाजी, शाम के वक्त मुसलसल बीन बजाता था।
0: वाह वाह, ये नज़्म
1: जबरदस्त। मेरे ख्याल में ये वो वाला झिंगर है जो हमारे यहाँ घरों में होते हैं पाकिस्तान में। झिंगर जिंदाबाद। चलिए अब सामीन से पूछ लेते हैं कि उनके इलाके में झिंगर शोर मचाते हैं या नहीं, और अगर मचाते हैं तो ये शोर किस तरह का होता है।
0: जी, लेकिन घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि हम कुछ और पैगाम दें। हमारे होम पेज nhk.jp/urdu पर सबसे नीचे मालूमात की सुर्खी तले एक लिंक है जिसका उन्वान है,
2: हम आपकी आरा के मुंतजर हैं, इस्तेमाल की शरायत मंजूर होने की सूरत में हिदायत पर अमल करते हुए पैगाम रवाना कर दीजिए।
0: सामिन, हम आपके ढेरों पैगाम के मुंतजर हैं। nhk.jp/urdu पर पैगाम भेजिए, और अब अपने मेजबानों को इजाजत दीजिए। अल्लाह।